0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chang chang jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ही गेम जो जी तेला जीप सिंह हो मचुमा के गेग मोटा तो न्यों से के जो लंका का मांस दे जिना नो येंदा ला यांस से चाव रियो होयो बचो जो जी टा मुन्यों रो संग तांगा मोटा तो तो मटा ताते ले गेम गने जीप जो लंका दी पेंडो रे
0: रे रे तांगा ह गेम ग क शाम बत जी छि इन रो तिंग ने ला सान रो रे
1: ओ रे रे रे लंका क्यों तो तो
0: हमें क्या या बस
2: 好有了把做亲不没有危机层面解决蓝科了马子有呢也不有这不能把做不解蒙春路街的公司多变在今呢每日街路街当西头所村特别新颖了西族当每日拍进主义巨人农蒙春在街街中村的等等顿平送街措施送店 别端着恰行绝对塞巴过拉行你地瓦所解齐缺订阅点赞主播生给林经理您接点名在即真心喜欢的进入